0: ले तिंदरा जी शोगिन दाल जला
1: लिसे ननो संसे ना बात छे ना
0: लस लस अभी चला ना बनी कुछ नंगो
1: ननो से सुने छ वो
0: ओ ल ल कुछ नंगो ल